0: प्राचीन समय से ही नारी को विशेष स्थान रहा है। हमारे पौराणिक में नारी को पूजनीय एवं देवतीय माना गया है। नाश करने वाली नारी है। प्राचीन काल से नारी को विशिष्ट सम्मान व पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। सीता, सती सावित्री, अंजसी, गायत्री आदि अग्रणित भारतीय नारियों ने अपना विशिष्ट स्थान सिद्ध किया है। कालांतर में देश पर हुए गए अनेक आक्रमणों के पश्चात भारतीय नारी की दशा में भी परिवर्तन आने लगे। नारी की स्वयं की विशेषता एवं उसका समाज में स्थान हीन होता चला गया है। अंग्रेजी शासन काल से आते आते नारियों की दशा चिंतित हो गई। उसे अबला की संज्ञा दे दी गई और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। आज का युग परिवर्तन युग है। उनका दशा अभिपूर्व परिवर्तन देखा जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक समाज सुधारकों ने समाज सेवा तथा हमारी सरकारों ने नारी उत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया है तथा समाज व राष्ट्रीय के सभी वर्गों में उसकी महत्वता को प्रकट करने का प्रयास किया है। निसंदेह नारी का स्थान हमारे देश में बहुत ऊंचा है। उसे संभालना हमारा कर्तव्य है। आप सुन रहे हैं MOP कम्युनिटी रेडियो का 107.8।
1: भारतीय समाज में नारी का स्थान, यह प्रस्तुत करने वाली आरती। समाज में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्व है। जिस प्रकार एक पहिए से गाड़ी नहीं चल सकती, उसके लिए दोनों पहियों का ठीक होना आवश्यक है, वैसे ही समाज रूपी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री की स्थिति समान होना आवश्यक है। दोनों में से यदि एक भी निर्बल हो तो समाज की उन्नति सुचारू रूप से नहीं हो सकती। एक समय था जब भारत में नारी का स्थान बड़ा ही आदरणीय था। समाज के प्रत्येक कार्य में उसका समान अधिकार था। पुरुष के समान ही सभा, उत्सव और अन्य सामाजिक कार्यों में भाग लेने की उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी। धार्मिक कार्य तो उसके सहयोग के बिना अपूर्ण ही मानी जाती थी। उस समय नारी सच्चे अर्थों में पुरुष की अर्धांगिनी थी। कोई भी कार्य उसकी सम्मति के बिना नहीं होती थी। पुरुष उसे मूर्ख समझकर उस पर अत्याचार नहीं करते थे। उस समय पुरुष समाज की चेष्टा नारी को हर प्रकार से आदर देने की रहती थी। नारी भी अपना गौरव समझती थी और अपना चरित्र व आदर्श उत्तम रखने का प्रयत्न करती थी। समाज में स्त्री शिक्षा का भी खूब प्रकार था। मैत्री, गर्गा, अपला, विद्यार्थी जैसे विदुषियों से देश गौरवान्वित था। उस युग की नारी वास्तविक अर्थों में देवी थी। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में नारी को बड़ा ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देख जाने का वर्णन था। किंतु समय परिवर्तनशील है। देश में अनेक परिवर्तन हुए, अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांतियों हुई और इन सब में प्रभाव नारी समाज पर भी पड़ा। मध्य युग में आकर नारी का पूर्ववत आदर और सम्मान न रहा। पूजनीय और आदरणीय के स्थान पर वह अब केवल उपभोग की वस्तु रह गई। इधर देश की राजनीतिक स्थिति में भी महान परिवर्तन हो रहा था। विदेश आक्रमण प्रबल होते जा रहे थे। इन विदेशियों का देश की सभ्यता और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ने लग रहा था। परिणामतः नारी पर अब अनेक बंधन आ पड़े जिनका कोई कल्पना न था। उस पर अनेक सामाजिक बंधन लगने लगे। उसकी स्वतंत्रता अब केवल घर के चार दीवारी तक ही रह गई। इस युग में जहां सामाजिक दृष्टि से अनेक बंधन लगे, वह अब साहित्य में भी उसे निंदनीय और माया की खान कहा जाने लगा। यह थी मध्य युग में नारी का स्थान।
2: यू आर लिसनिंग टू MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8।
3: आई एम अ पोएट। आई एम एन ऑथर। I am an author.
4: I am a soldier.
5: What are you?
4: I am.
5: What are you?
4: I am.
5: What are you?
6: Support us. We are your future. Facilitate leadership among youth.
1: अभी हम बबीता को सुनने वाले हैं, जो हमें भारतीय समाज में नारी के स्थान के बारे में बोलने वाली है।
7: नमस्ते, मेरा नाम बबीता गणेश्री है। आज मैं भारतीय समाज में नारी का स्थान के बारे में बोलने वाली हूँ। आधुनिक युग जागृति का युग है। देश में जहाँ सामाजिक और राजनीतिक क्रांति आई, वहाँ नई समाज को भी उन्नति का अवसर मिला। यह युग समानता का युग है। नारी ने अपने खोए अधिकारों के लिए समाज के साथ प्रबल संघर्ष किया। परिणाम स्वरूप पाश्चात्य नारी के अधिकारों के समान ही भारतीय नारी को भी समाज के सभी क्षेत्रों में स्थान मिलने लगा और मध्य युग में उस पर लगे कठोर बंधन धीरे धीरे कम होने लगे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में नारी ने पूरा सहयोग दिया। कठिन मुसीबतों सही घर का आंगन छोड़कर जेल के बंधन स्वीकार किए, अनेक यातनाएं अपने सिर पर झेली। नारी ने इस त्याग और सहन शक्ति को देखकर विश्व हो समाज ने उसकी शक्ति को स्वीकार किया, उसके वर्तमान नेतृत्व के सामने सिर झुका दिया। सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सभी क्षेत्रों में अब नारी पूर्ण स्वतंत्रता के साथ भाग लेने लगी। इस स्थिति को देखकर देश के वर्तमान कर्णधारों ने उसकी महानता को स्वीकार करते हुए पुरुष के सामने ही उसका स्थान भी मान लिया और रहे सहे बंधनों ने विरुद्ध एक प्रबल आंदोलन किया गया। उसी आंदोलन की ध्वनि कवि पंत की इन पांकित्यों में व्यक्त होती है। सत्य तो यह है कि जब तक नारी का उत्थान नहीं होगा, तब तक देश और समाज की उन्नति असंभव है। एक नारी की महानता समस्त परिवार को महान बना देती है। देश की सभी महान विभूतियों के निर्माण में नारी का पूर्ण हाथ रहा है। अब समय आ गया है कि नारी समाज के साथ लगी हुई सभी कुप्रथाओं को समाप्त किया गये। विधवा विवाह हो, पिता की संपत्ति में कन्या के अधिकारों को माना जाए। यदि समाज नारी की महत्व को स्वीकार करके उसे सभी अधिकार उसके पूर्ण लाभ देते हैं, तो देश फिर अपने उसी गौरव को पा सकती है।
2: You're listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride.
8: My mother can only see black color. She can't see how beautiful the rainbow is. If only she could see the color like I do.
9: Let people see the color of the world. Join National Eye Donation Day. This public service announcement is brought to you by MOP Community Radio 107.8.
1: अब आप सुनने वाले हैं चैतन्या को, जो स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बोलने वाली हैं।
10: नमस्ते, मैं हूँ चैतन्या और आज मैं औरतों के स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में बताने वाली हैं। आधुनिक महिलाएं ज्यादा सचेत, ज्यादा जागरूक और ज्यादा साहसी हैं, लेकिन फिर भी जब बात अपना ख्याल रखने की आती है तो वही लापरवाही। कहीं आप भी इनसे में एक तो जो वजन बढ़ने की चिंता में तो डूबी रहती है, लेकिन वजन कम करने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं करती। किसी के पास बहाना है कि उसे अपने लिए व्यक्त नहीं मिलती, तो किसी के पास व्याखी व्यक्त है भी या नहीं। ऐसे में रोजाना बेसिस पर महिला चिकित्सक को विजिट करना भी मुश्किल है, लेकिन कुछ खास तरीके को अपनाया जाए तो आप घर पर ही अपना खास ख्याल रख सकती है। आइए आपके रूटीन में शामिल करने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, इन जिन्हें अपना कर आप हेल्दी रह सकती है।
4: अब आगे आप सुनेंगे दीक्षिता को जो हमें और टिप्स देंगे।
11: लिफ्ट छोड़कर अपनाइए सीढ़ी। आप भले ही जल्दी में हो, फिर भी अपनी दिनचर्या में लिफ्ट छोड़कर सीढ़ी से उतरना चढ़ना करें, इससे आपका हृदय स्वस्थ रहेगा। दूसरा है नाश्ता। नाश्ता को अपनी दिनचर्या का जरूरी हिस्सा बनाइए। नाश्ता आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और आपको पूरे दिन की शक्ति देता है। नाश्ता करने वाली औरतों से ज्यादा मोटी होती है, इसलिए हेल्दी नाश्ता जरूर करें। तीसरा, वजन को नापा करें। समय समय पर अपने वजन को नापा करें। अपनी ऊंचाई के अनुसार अपने वजन को बनाए रखें। यदि वजन बढ़ रहा है तो खाना छोड़ने की जगह व्यायाम, फल, दूध आदि के जरिए वजन को सामान्य रखें। चौथा, दूध और फल जरूरी है। रूटीन बना ले कि रात को सोते समय एक गिलास दूध पीना ही है और सुबह नाश्ते में एक फल खाना ही है। दूध पीने से आपकी हड्डियों को प्रोटीन और कैल्शियम मिलता है, जो उम्र बढ़ने के साथ बेहद जरूरी होता है। पांचवा, सैर पर जाइए। जो महिला व्यायाम नहीं कर पाती है, सुबह आधे घंटे ही सही टहलने की आदत डालें। सुबह की खुली और ताजी हवा में टहलने से रक्त संचार ठीक होता है, साथ ही दिमाग को भी ऑक्सीजन मिलता है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों तंदुरुस्त रहते हैं। छठा, रूटीन बनाइए। हर चीज के लिए रूटीन बनाइए और समय तय कर लीजिए। इससे आप पर किसी भी काम का दबाव नहीं रहेगा और आप तनाव में भी नहीं आएगी। सातवां, हंसना ना भूलें। चाहे जो भी हो, खिलखिलाना ना भूलें। हंसना लाखों बीमारियों की एक दवा है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। आखिरी में, महिला चिकित्सक से मिलिए। 6 माह में एक बार आप बीमार ना भी हो तो अपनी चिकित्सक से जरूर मिलें। 6 माह में एक बार अपनी जांच जरूर कराइए और जानकारी बढ़ाइए।
2: You're listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride.
12: I'm Dr. Mohan Rajan, Chairman and Medical Director, Rajan Eye Care Group of Hospitals. You're listening to MOP Community Radio 107.8. Our radio, our community, our pride. I take this opportunity to give a message on eye donation. Eye donation is a very, very important thing which everybody can do, because there are approximately 3 million people blind in our country due to corneal blindness. And the simple form of eye donation after death, if you donate your eyes, these patients can see the light of this world. More importantly, this among these 3 million people, 60% are below the age of 15 years. Which means that childhood blindness is one of the largest blindness which is affecting our country in a very, very big way. So if you're able to eradicate childhood blindness, eye donation has to be the order of the day. Dhanathil sirandhadu kandhanam, irandhapin kankali dhanam seidhal, sirandhan alpunniyam seirndhidume. Thank you.
2: अभी हम कुंजल और गायत्री से बात करेंगे, जो शादी से पहले एवं शादी के बाद के महिलाओं के बारे में बोलेंगे।
7: स्त्री ईश्वर की सबसे बेजोड़ रचना मानी जाती है। जब से वह पैदा होती है, कहा जाता है कि वह पराया धन है, किसी और के घर चली जाएगी। बचपन से ही वह ढेरों सपने सजाती है, अपनी शादी के, उसके बाद के जीवन के, और फिर एक दिन वह उन सारे सपनों की डोली आशा भरी आँखों से एक नया संसार बसाती है।
13: एक सच्ची कहानी, दूजे कही मनमानी, एक परम सुख दूजी में बने घानी, एक में प्यार का रुख है, उसमें जीवन का सुख है, वही मृदंग की ताल है, वही तो सारा कमाल है। एक सच्ची कहानी है, वही नयन तारे हैं, वही माँ के दुलारे हैं, वही माँ का स्पर्श है, वही पिता का संघर्ष है। एक सच्ची कहानी है, वही तुम्हारी अभ्यक्ता है, वही तुम्हारी पूर्ण शक्ति है, वही दिशा का ज्ञान है, वही तुम्हारी समान है। एक सच्ची कहानी है, दूजा बना अभिमान है, बन गया जो प्रमाण है, उसमें तीर कमान है, बनता कोई निशान है। एक सच्ची कहानी है, सुख अतीत हो आया है, बन के खंडर छाया है, पहचान की है आन रखी, जीतेंगे मन में ठान रखी, जिम्मेवारी जब ले अपने होने की, तभी बन जाए जिंदगी सोने की। एक सच्ची कहानी है,
7: यही से शुरू होती है स्त्री के बलिदान की कथा। जो सपने वो सजाकर आती है, उन सारे सपनों एक एक करके बलि दी जाती है। साझेदारी स्त्री और पुरुष एवं परिवार के बीच होती है, किंतु सारी साझेदारी तो स्त्री को ही दिखानी पड़ती है। वह रोज अपनी चाहतों का गला अपने हाथों से घोटती है, ताकि अपने प्रियजनों की चाह सांस ले सके। कभी बीवी तो कभी माँ के नाम पर वह त्यागों की अपेक्षा की जाती है। उसकी जिम्मेदारियों का वजन इतना बढ़ जाता है कि वह अपने ख्वाबों को भूल जाती है। अपने परिवार की राह को फूलों से बिछाते बिछाते उसके कितने कांटे चुभे हैं, इनका उसे कोई जान न पाया। विवाह के बाद वह स्त्री 2400 घंटे काम करती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेती है। उसे बट यह पूछा जाता है, आखिर तुम करती क्या हो? हंसी तो तब आती है जब जवाब यह मिलता है कि उसे कुछ नहीं पता। उसके आगे के जीवन की व्याख्या करने में शर्म नहीं। घर बैठी वो हर स्त्री जानती है अपनी कहानी, वहाँ बैठी हर स्त्री को मेरा सलाम। खुद को दर्द देकर जो तुझे दे राहत, ए मूर्ख मानव वह स्त्री है, कर तू उसकी इबादत।
13: जब एक स्त्री अपने शादी से पहले और अपने शादी के बाद के सपने बुनती है, तब यह होता है। आजी सुनते हो, कहाँ सुनते हो, बोल बोल के थक गई हूँ, आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। खाक सुनते हो, बोलती मैं कुछ और हूँ, सुनते कुछ और हो। आजी सुनते हो, फिर झगड़ा भी करते हो कि मैंने यह नहीं कहा वह कहा था। पति बोलता है, मैं जानता हूँ कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, तुम कुछ भी बोलो, मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकती, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारी है मैंने, मैंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। हाँ बोलो, अब क्या कहना चाहती हो, अब बोलो भी सही, या अब मौन व्रत रखने का क्या इरादा है। मुझे पता है अब तुम क्या कहने वाली हो, आंखों में वही पुराने आंसू, थोड़ी देर मौन व्रत, फिर वही राम कहानी। हाँ हाँ, मैं तो पागल हो गई हूँ, कुछ भी बोले चली जाऊंगी, तुम मुझे बहुत तंग करने लगे हो। मैं मायके चली जाऊंगी, भाई को सब कुछ बताऊंगी कि तुम मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते, तुम्हारी जिंदगी में जरूर कोई और आई है। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग भी कहां से कहां चलता है। अच्छा बाबा, मुझे माफ कर दो, एक कान पकड़े, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती थी, और मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप हो कि सुनते ही नहीं, आप हो कि सुनते ही नहीं।
7: मैं स्त्री हूँ, जगत के सामने सच रखूं मैं कड़वा, फिर भी दिल से निकले सिर्फ दुआ, कभी जहर सी कुटिल, कभी शक्कर सी मीठी, दुनिया को कंफ्यूज करती मैं एक स्त्री हूँ। खुद के खिलाफ कुछ भी सुन लूं, परिवार की तरफ आंख उठाने न देती हूँ, कभी चंडी तो कभी दुर्गा, हजारों रूप लेती मैं एक स्त्री हूँ, अपने सपनों से समझौता करके दूसरों के महल खड़ी करती हूँ, टूटे ख्वाबों को फिर जोड़ती वो मिस्त्री हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। खुद के तूफान, खुद में तूफान हूँ और खुद में तूफान लेकर घूमती हूँ, फिर भी एक ठंडी लहर सी सब पर गहजती हूँ, कभी गरजती कभी बरसती, मैं बिन मौसम की बारिश हूँ, मैं एक स्त्री हूँ। कभी चट्टान सी शक्त कभी यमुनोत्री सी सरल, कभी चट्टान सी शक्त कभी यमुनोत्री सी सरल, है मुझ में ही अनजान न जाने कितने पहलू भरे, और तुम मर्द कहते हो बेचारे तुम ठहरे। सारे दुखों को सबसे बचाती वो मैं एक बहुफिक्री छत्री हूँ, मेरी तरफ देखो दोस्तों तुम्हारे सामने खड़ी हूँ मैं एक स्त्री हूँ।
14: You're listening to MOP Community Radio 107.8, our community, our pride.
15: You are listening to MOP Community Radio 107.8, our community, our pride. My name is Eric Lund. I am the Cultural Affairs Officer at the U.S. Consulate in Chennai, and I am happy to be here today at MOP and share a message with you, and that is, as a student, now is your time. It's your time to live out your dream. Have a dream, realize that dream. And what I have to say about that is, many folks at your stage of life believe that they don't have the opportunity to live that dream or to realize that dream. But that's not true at all. You may ask, why is that? People are told that dreams are just fantasies. That's not the case. When you're a young person, I say, dream big. And then go after those dreams. Because you can achieve those dreams. And now is the time to really think about what it is that you want to achieve in life. And as a student, you're given the opportunity and the tools to realize those dreams. I've had the opportunity to see some of the creative thoughts and ideas put together in some of the videos the students have done here. And these are really amazing videos. And you're the students that have put these together. I see you as people who can really contribute to the movie industry or the video game industry. Don't sell yourselves short. Realize these dreams. Be the dreamers of tomorrow, and you'll be the future leaders of tomorrow. As I said before, dream big. Become the leaders of India.

0: अभी हम मेघना को सुनेंगे जो बच्चों की परवरिश के में माँ का योगदान के बारे में बोलने वाली है। उसके बाद रिद्धि कंटिन्यू करेगी।
1: नमस्ते, मैं हूँ मेघना। बच्चे की परवरिश में माँ का योगदान के बारे में मैं और रिद्धि बात करने वाले हैं। एक माँ का अपना बच्चे के प्रति प्यार उसके पैदा होने से पहले शुरू हो जाता है। वह इसी समय से अपने वक्त और आशाओं को त्याग करने लगती है। वह न सिर्फ हमारा पालन पोषण करती है बल्कि हमारी दोस्त भी रहती है। अगर एक औरत विद्यालय जाकर बच्चों को पाठ पढ़ाए तो वो अध्यापिका कहलाती है, पर यदि वह घर पर सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाए तो वह सिर्फ माँ कहलाती है। अगर वह अस्पताल में बीमार लोगों को देखभाल करे तो नर्स कहलाती है, पर यदि वह अपने बच्चे की देखभाल रात भर जाग कर करे तो सिर्फ माँ कहलाती है। अगर वह बाहर जाकर गाना गाए तो गायिका कहलाती है, पर यदि वह हर रात अपने बच्चे को लोरी सुनाए तो सिर्फ माँ ही कहलाती है। अगर वह रात रात भर जाग कर काम करती तो उसके पेशे की वृत्ति होती, लेकिन यही काम घर पर उसे सिर्फ माँ का दर्जा देती है। अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि एक बच्चे की परवरिश दुनिया का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण काम है। एक माँ अपने बच्चों को भोजन देती है, पालन पोषण करती है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। वह घर के हर सदस्य का फिक्र करती है। जब बच्चा देर से आए या बीमार हो जाए वह बेचैन रहती है। माँ अपने बच्चे को पढ़ाई करने की मदद करती है। वह उसे संस्कार सिखाती है और उसके भविष्य की कल्पना करती है। एक माँ सिर्फ अपने संतान की ही नहीं बल्कि आने वाले पीढ़ियों की निर्माता है। वह देश के भविष्य की भी रचयिता है। इस कारण एक माँ का समाज के प्रति योगदान बहुत आवश्यक है। ऊपर जिसका अंत नहीं उसके आसमां कहते हैं, जहाँ में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। दुनिया की सब चीजें तुझ पे कुर्बान, माँ तुझे सलाम।
2: You're listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride.
3: Hello, this is Aishwarya Rajnikant Danush. You are listening to MOP Community Radio 107.8. Our radio, our community, our pride. Web safety, it's a huge hazard today, and we don't realize how much we put ourselves in danger. And we think it's okay to go click on a website, it's okay to go see a blog or anything, but you never know once you click on that how many people are watching you. And I really hope that they're all aware, and not just them. I think every woman needs to be aware that you cannot put up certain things, you cannot share certain information about you, and you need to be aware of your safety. You can't depend on anyone else for that. And thank you for all the lovely words on me. I think if I'm of any use or any inspiration to anyone, I would think that as the greatest achievement. And I'm hoping that I'm learning every day from women all around. And I think each one of us should kind of imbibe inspiration from everyone around us, whether it's our mother or whether it's our teachers. I think every woman is an inspiration to the other, and that's how you achieve in any field that you want to achieve. So all the best to everyone here, and I hope you all have a great day.
4: Thank you so much.
3: Thank you. Pleasure.
0: अब रिद्धि उसी विषय पर हमें और ज्यादा बोलेगी।
5: बच्चा पैदा होते ही एक औरत की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। उनका पूरा ध्यान बच्चों को संभालने में और उनकी देखभाल करने में लग जाता है। उन्हें अपने बच्चे के विकास के लिए अच्छी तरह से शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास के बारे में पता होना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे मुश्किल, सबसे अधिक जिम्मेदार और संतोषात्मक कार्य जो एक औरत को सामना करना पड़ता है वह है अपने बच्चों की परवरिश करने का। एक बच्चे को लाने का, उसे संभालने का और परवरिश करने का ज्ञान एक माँ को अपने आसपास और अपने स्वयं के परवरिश से आता है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए सबसे प्रभावशाली रोल मॉडल माना जाता है। माता पिता जो दूसरों के प्रति सम्मान, दया, ईमानदारी, मित्रता और उदारता दिखाते हैं, वह अपने बच्चों को भी इसी तरह से व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
2: यू आर लिसनिंग टू MOP कम्युनिटी रेडियो 107.8, आवर कम्युनिटी आवर प्राइड।
4: You're listening to MOP Community Radio 107.8. My name is RJ Syed, and a message to all you youngsters, all you beautiful looking soup girls out there. When you're on the internet, make sure you're safe and you're responsible and don't be too naughty on the internet. Yeah, that's me, RJ Syed. Peace out.
2: अब हमारे सामने श्रेया है जो हमें प्राचीन काल के बच्चों के बारे में बताएगी।
6: नमस्ते, मेरा नाम श्रेया है और मैं प्राचीन काल के बच्चों के बारे में बताने वाली हूँ। हजारों वर्ष के लिए परिवारों ने अपने बच्चों को खेतों में काम के लिए भेज दिया, जो उनके लिए जीने का सिर्फ एक साधन था। अमीरों के बच्चे इससे बच गए। सरकारी अधिकारियों से इन बच्चों को कम सुरक्षा प्राप्त हुई। औद्योगिक क्रांति के समय बच्चों का हाल और भी बुरा था। कर्मचारियों की कमी होने के कारण बच्चों को काम पे रखा गया। छोटे से छोटे बच्चों को 16 घंटों तक काम करवाते थे और कम से कम खाना देते थे। जब बच्चे काम पर देर से आते थे उन्हें खूब पीटा जाता था और उस दिन उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था। ज्यादा काम करने से और खाने की कमी के वजह से बच्चे छोटी उम्र में ही मर जाते थे और बीमार पड़ जाते थे। अर्थात औद्योगिक क्रांति के समय बच्चों को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्हें दिन रात मेहनत करने के बाद ही जीने के लिए कुछ पैसे मिलते थे। उनके पास जीने के बहुत कम सुख सुविधाएं थी, अपितु इस जमाने के बच्चों के पास जीने के सारी सुख सुविधाएं पहले से उपस्थित है।
2: You are listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride.
7: This is Jody Tolliver, and you are listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride. I'm here with IAPA, the International Alliance for the Prevention of AIDS, from Chennai, India. Protect yourselves, protect your loved ones, end the stigma of HIV.
2: अब हम वैष्णवी से बात करेंगे जो हमें आजकल के बच्चों के बारे में थोड़े ज्ञान देंगी।
8: मैं पी वैष्णवी आज के बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। आज की दुनिया में नई नई प्रौद्योगिकियों के साथ ये तथ्य की बात है कि बच्चों के साथ खुद को खराब करने के लिए पर्याप्त कारण है। सिर्फ प्रौद्योगिकियों ही नहीं लेकिन बच्चों पर जीवन शैली का प्रभाव भी पड़ता है। आजकल शिक्षित माता पिता को लगता है कि अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे देने की आवश्यकता पड़ता है, अतः हम बच्चों के हाथों में फोन, टैबलेट्स जैसे अन्य गैजेटों के होना देख सकते हैं। इन सब ने बच्चों के भलाई की बदल उनको खराब कर दिया है। सच यह है कि हम एक भी बच्चों को गैजेटों के बिना रहना देख नहीं सकते। आज भोजन भी बच्चों के स्वास्थ्य को खराब किया है, अतः भोजन और प्रौद्योगिकी बच्चों के जीवन को खराब करता है। आज के बच्चों की रोजमर्रा गतिविधियों में नखरे एक हिस्सा हो गया है। किसी भी प्रतिबंध बच्चे पर लगाया है, खास तौर पर प्रौद्योगिकी और बाहर के खाने पर, तो बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान को छोड़ देते हैं। वे अपने माता पिता की बातें और नहीं सुनते। मेरी संदर्श से मैं यह कहना चाहती हूँ कि आज की बच्चों हमारे पूर्वजों से तुलना करने पर बहुत अनुशासनहीन और बुरी रवैया के साथ जीवन बिताते हैं, जिसके कारण उनका विनाश होना संभावना भी है।
2: You are listening to MOP Community Radio 107.8. Our community, our pride.
9: Hi, this is Leon James and you are listening to MOP Community Radio 107.8, our radio, our community, our pride. my social message would be just be good people, be kind, and just help everyone, I guess. So, hi, na Leon James. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது MOP சமுதாய வானொலி 107.8. நமது வானொலி, நமது சமுதாயம், நமது பெருமை.
10: मैं वर्षा इस प्रयोजन का अंत कर रही हूँ. बुंदेलेहर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी. खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. महिला सशक्तिकरण के बारे में कई सालों तक बोला जा सकता है. इस विषय का कोई अंत नहीं है, परंतु मैं अपनी सीमा में अपने विचार इस विषय पर प्रकट करना चाहती हूँ. महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है. महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस विषय को बचपन से ही प्रसारित व प्रचारित किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे कच्चे घड़े के समान होते हैं. वह अपने आसपास पास हो रही चीजों को, बातों को अपना लेते हैं बचपन से ही. और लड़कियों में फर्क किया जाता है. भाई बहनों के लिए एक तरह के नियम होने चाहिए, लेकिन उनके लिए अलग अलग नियम बनाए जाते हैं. हाँ, ये सच है कि बड़े पैमाने पे ये रीतियाँ नष्ट हो रही है, परंतु कई वर्गों में अभी भी नारी को नीची जाति माना जाता है. एक नारी या लड़की पूरे समाज से लड़ने की हिम्मत रखती है, लेकिन तब तक जब उसके माता पिता उसके साथ हो. परंतु जब उसके माता पिता उसका साथ ना दे, तब वह कमजोर हो जाती है. यह सच है कि आज के जमाने में, इस युग में, नारी को शिक्षित करने का प्रयास जारी है और नारी कई वर्गों में कामयाबी पा रही है. परंतु कुछ वर्गों में नारी को शिक्षा केवल परिवार को ऊंचा स्थान देने के लिए दी जा रही है, और शादी के बाद वही घर के काम करने पर उसे मजबूर किया जा रहा है. एक दो साल कार्य करने के लिए उन पर पता नहीं कितनी ही डिग्रियां लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है. यह सच है कि दबाव लड़कों पर भी है, परंतु वह अपने जीवन भर कार्य करते हैं. परंतु सिर्फ एक साल कार्य के लिए दबाव डालना बुरा है. एक नारी से आज समाज यही चाहता है कि वह पढ़े लिखे और फिर शादी के बाद घर के काम करे. एक लड़की होते हुए मुझे भी बचपन से यही कहा जाता है कि शादी के बाद तुझे घर के काम करने हैं. मेरा एक ही सवाल है इस समाज से कि अगर शादी के बाद मुझे घर के ही काम करने हैं, तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करें? जब नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों हो नारी बेचारी? आज नारी को उपभोग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उनको उपभोग के लिए इस्तेमाल करके वही मर्द उन्हें अब आपत्तिजनक नामों से बुला रहे हैं. यह उनकी स्थिति को और भी खराब कर रहा है. महात्मा गांधी ने कहा था, अगर क्रूरता ही शक्ति है तो बेशक पुरुष शक्तिशाली है, लेकिन अगर अहिंसा और त्याग ही शक्ति है तो नारी पुरुष से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है. मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि बंधन दोनों पुरुष व महिलाओं पर होने चाहिए, वरना किसी पर भी नहीं. लड़कियाँ चिड़िया होती है पर पंख नहीं होते लड़कियों के. लड़कियाँ चिड़िया होती है पर पंख नहीं होते लड़कियों के. मायका भी होता है और ससुराल भी, पर घर नहीं होते लड़कियों के. माँ बाप कहते हैं यह तो पराई है. माँ बाप कहते हैं यह तो पराई है. ससुराल वाले कहते हैं कि ये तो पराए घर से आई है. भगवान, अब तू ही बता, ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई हैं, किस घर के लिए बनाई हैं? धन्यवाद.